तहु हमारे किसी आसुक चरा संग लोप मुंग रच्चा पुंग खना लाइका लोप मुंग रच्चा मुंगो खोरा निक्या बुखोक रीता दे पोरमा जिन जैसा समुखलाई ना फनो थागा हिंगे जिन जिनी सूरी मानी बिचिंते सूरी वही जिन समुखलाई ले है दिवना तब वो हमारे जिन चीनी तीनी नी कॉक बहुत माउने वर्किंग उमेन इन ए फैमिली अब कब कैसे नुकुनी जे करोक्सा बुरे जे समुंखलाई नहीं तो नहीं बनोते जिन कॉकलम शालाई नहीं करोक्सा बुरे जे फ्रो समुंखलायो फातारो अब हुबा र हबानो को अब के बा जिन कामियाम जे रोको नुक्जा को जिन करोक्सा बुरे नी समुं नग नग खुंग बसुक जराते दं आबुन कारै तुमुन फातारो हाबानगो एबाके बजेस सामुं वैफान गदाल जक दं हायंगे बिनि बागे काम सामु गबांग दं कु एबा सालब्रुम जे नग नग खुंग बुरै दंनाय रोगनि जे सामु बिनस्लाय तिहिसा बांगै थांगो हायदे आबुनि

बस्का आगस्टालनि साल नैजिसे नैजिसा निसिमि आगस्टालनि न साल नैजिथाम सालमारि जरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथरिटिनि बखाख्रि खयहांकरनि लुवाजिमाबाय लक आदालत संसार जागानो आबनि बागै अनलाइन दै दे अफलाइन दै बाबायनानै निबिसिंथै न आबनि सेबनो नाहारै माने हेनै साजागा अ लक आदालत संसार जागमानि कक बथामांखा लाइटे साखे कचांग ददर खे खलाई हाबर्न फानरुई नांगमानी माथे न रनानी अ लोक अदालत जुदा जुदा बेदे रनते मामला नाहार जागन हनि साजाक आब्रोन बिसिंग तंग बैंकिंग रोगनते सिविल क्रिमिनल लॉ फैमिली लॉ लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ ताइलेर नोनते सेबुक ट्रांसफर पिटिशन आबाहेरगनाथै अ लोक आदालत संसार जागोन आबनि बागै हेल्पलाइन ब खलक जाका हेल्पलाइननि नम्बर रंखा साबा सा बुक्सा बुक्सा हेकाबा 15100 हेकाबा खय हांकरनि कर्तब गोरोंगै मानाय आबनि बागै वेबसाइट बर जाका आबंखा https://khowaitrp.com dcourth.gov.in or website of Habi Logon Klinemanai. Tibrasa Hamkrai Bede Kaste Hafang Kaiso Kokman Bishinti Kesaklakia Ringrim Dog Nisimi Ringrim Jaro Ringsirin Tongai Ringsirin Najak Tai Ringsirin Nairo Borok प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप बागै बीएमएस पोर्टल अनलाइन टिकोयलाय याफरिमान बायना अ पोर्टल आबंखा bms.tripura.gov.in अ पोर्टल अ नैसाय निचे दग इंग्रजि बिसिनि अ जुन तालनि सालथाम जे सालबारनि बिसिंगो कोयलाय याफारनानि रंलंनि रिचुमबाय स्कूलनि युनिफॉर्म बाय कानै बोजाक पासपोर्ट साइजनि मांगपली एसटी सार्टिफिकेट सेकांग्रेमनि रोंसोरमानि मार्कशीट रक रोनो नांगोन

0: नौखनेज 101.6 मेगाहर्ट्स एफएम उज्जैन तो ते ओजरव जों हाबलायनाय हायनो हाय सालकामा पांडव आशिक जरा नरक खनालाय दं माने हायुंनि खरां फायके ओजरव कोगदु फाजा खा नाय नेलेने कोगदु गो स्वागत हेलो हेलो ककरे जोय थाका जों सालाय थांनाय माने वर्किं उमेन एबा खिबा जेबोरै र' फाथारो नग्न खुनि फाथारो अंखरै सामुं खालायै दङ बरकनि बागै बरकनो तै बरकनि लांमानो तै जों कग्लाम सालाय दं माने हेलो हेलो
1: हेलो फुंका हाम बायनो बेलायखो खुलमुं याफारो
0: फुंका हाम नन बताखुक
1: आं यां शिवचंद्र पारानि रविन्द्र देवरमा बाय
0: आओ बेलाखिनो हामबाय ताखनो लामसो ते अजराव दसिनि तिनिनि एकक बथमानते इतामो सानानि मुचो
1: ए गबरि रावनि तै थाता नग बिसिं बेबां नं दि हेदा बरि राव कुं खाबाय बरि राव थारा फातारा पानां दि बरक बसुकेस सामुं खायै बाय हेलो
0: खनाय जों
1: हला
0: बाय खनाय जों
1: फातारा पानां दि बसुकेस सामुं खायै बाला सखे तुबै फाय कुनु केबें मंकरै खे कुनु जों जाला करै खे गाहाम के खायतु बरै हमानि अ हा थाकानि कत बुमा हमा खनाय दबा बाय बुमा कत उके याबन फाटा रस बुसके तुइ जुलै गाहाम के पुरा वालाय सुलाय करै खे जे कुनु बरै बरै फान वालाय खे सलाय बरै फान वालाय खे बाय बरै र थांगै माना खाय के बो थान्दारै गसां गसां खे उङै मा थानाय मासा हर मासा तुइ अबन पञ्च समान खायै उबै गसांग्रै तनै मानो बरि रपनि बखा बसुक से गाहाम अम सावै से साबाय बाय नंगे ए अबन बरि रावना स बरम रना नांगो बाखा बाखा नु खोंग नु बलेना बाय आनि बरैले हाय से माया बुय हाय पट नै पट पट थाम नै रखन बोल ना गोबां मा सामुं खायो होनै फोंगे सों तामनि सों खाना बाना बोरै रं न ओंखा बरक जे मा मानि खायो नि निसाय सला रं निसाय बोरै रं नि मार खाना सामुं गोबां मा दाल बि दाल सामुं लसे लेखा बाया थाना थांखा के हे दबा बाय বুড়ি রঙ বাক্সা বাক্সা থাকো কি তক খাই মারক নব আমার খাই মানে তু তেলে বাইবি একদম তাজা গ্যাং অবনি বাগানে সঙ্গ বুড়ি রঙ বরম লাই নগ নু খুঙ্গ কসাং না বাগাইব সিন ফ্যামিলি পরিবার কসাং ইব কসাং না ইব তা বাই সিনি বুড়ি রং থেকে বুড়ি কাহাম গাকে সিনি বিহিক পানংখা বাবু আমা ফানংখা তা না না আমা আম হাইপা নাংখা ওখান বিহিক পা নাংখা বরকসে নগ নু খুং কসাংরাই বরি রক সরাই থানাং দি শিকলা পা নাংনি হে দেবা বাই বরি খা ল কিপু বরি আ

0: तहोबुमारिसिंग हजुर अब नरक खाना पाइखाना सिनी रचा मुंगने बिसिंग देखलाइए नरक सवैमान खाना बमहाय पान्दानि बखागोजों थांगैदों ते नरक न साका जे बांग्लाबाय खरकसा सिंगल मादार अबन तैयै जों गग्लाम सारनायनि हिनि खरकसा बुमा बुफा खरकनै मिलिवै खरकसा बसान तरि लग्रिवै दिसाव आथानि फियाबा गानाय गिनिनि गोबां मा गेबेंमुं फायु खरकसा सेरायन कतर खालायथानि आथानि सायचुं बुमा तुमुं बसान तरिनानि नांखा हिनायगे बबहाय जों जालनि बिसिंतै बबहाय गेबेंमुंनि बिसिंतै थानानि नां आबु फियाबा जे खरकसा बुमा लगि संकरै सायचुं बसानि बार जाना हाबै दंनाय ब सिमिन' सायमानो ब सिमिन' सिउ बिनि बोखाव तामु बिनि लगिव तामु गैदों बसान तैयै बिनि बबहाय वानसुमं बिनि खाव ब सिमिन' सिउ गानाव दंगै कि जे लगिरिनाय ब लगिरि फानो बसान तैयै बसानि थिनांन तैयै ब तामु वानसुग
1: একদমই আমরা যেটা বলছিলাম একক মাদার বা সিঙ্গেল মাদার, আসলে আমাদের সমাজে সিঙ্গেল মাদার কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। ইদানিং এই শব্দটার সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি এবং সেই সঙ্গে একক মায়েরা কিন্তু সমান তালে একাই সন্তানের

0: आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी के परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया,
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
5: ले आ गया ना किडबैग।
6: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिली।

बढ़ रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार

परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों

को भी कार्ड दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को करियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने।

साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं।

ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है, कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है।

0: रखा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो, वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले, तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हां, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी

0: डाकफान सामकानी जो एकश देरश टके हाँ सामान मानसी जे कलचार दो बैनो तेजी कमियाम जी जे प्रब्लेम जो खाईगे तेवस जो गौं खाईमो तमाम हिंगे वन सुख मूंग नाइम से जो आबो हेमा थानेबाबन जी सिंगार नाबन मोटामुटी तब उकोजा कताल
1: जी सिंगार विशिंग अमन चाहिए विपासारी खरा से गई तक खरगे दामानी आं तो बर पार्सनली सिनिया फी आं बर खरान चाहिए दामानी तब हमने कटाल के जेचराय आं विशिंग तया नहीं खरगसा गई बीन सामू चाओ ते बैन विशिंगे वारा बैन
0: कुलमा बैन गई गईा मांगा खनाका आं बनो और जगह एडभार्टाइज खाया एक्चुअली चुजन सैमानो बी कक्टाई बहुत आं बेलेगे खाना जखा दामने बी बैन हाइपनो अब जी कलचार प्लस जी ट्रेडिशन गई
1: अब
0: हाइर अब जोन अब न के किसा जो कक सलैमानी कचारो रसाम खाला दाम
1: होनी
0: खनाचो जो रसाम सारी टाइम
1: आनी तो आं कलमा बैन रसाम खाना मानो
0: कलमा बैन ना
1: एम तो टंग और माइसिंग जरा हानी टंग तैसा सुरभि बेबर कलाबरेट खालामानी तम जन सं बहुत थाना आं मूंग नंबाई मालय मा हनी टंग खरसा कैसा सं
0: हे एडुकेशन दो के पापा बेखा
1: एजुकेशन तो आं 2020 पाइखा पाइम तो
0: जब रोनी
1: आं तब हे आगे तो आं जब ट्राई खाई खाई नो हे तब हे आं फिल्म फुल टाइम रोसने हने आर ना फुल टाइम रिजिटे दंसने ते अलका रक थे आता
0: आमाने लगे लगे जो अबहार खाईमानो कक्रे हेबा हे जेकब कचार किसा जो ब्रेक नी और रेसा मुटा खाने दाम

फिल्म मेकार नुनी मानो तमें सकाटक मान उलो नो अब सौ जन गांगे विनी रेजाब मू खा चो मे टांगी खा लाइन जरा किसा दंग टांग टांग जेकब गांगे फाड़ी किसा रिलैक्स खाई मूर चाउन खा लाइन

थांनान सिगां गिजा कक्टोबर खालायना मन्त्रिपखर नन्मिनिनि मन की बातनि फिलसारा थामजि बामैल' हाखतरदै फाटार हाखतरनि लुकुरक बाय बिनि वानसुक मुंनटि कक नारखा तिनि दिल्ली कतालनि मेजर ध्यानचान्द नेसनेल स्टेबो तंटटि मन्त्रिपखर मन की बातमेलनि खनाका मन्त्रिकर प्रोफेसर डाक्टर मानिक साह हुकबर मन्त्री रतननाथ एमपी राजीव भट्टाचार्य एमएलए अभिषेक देवराय आकसं केन्द्रनि साखामटै नकुं हामक्राय मन्त्री जगत प्रकाश नाड्डा खना दिल्ली कतालो केन्द्रनि साखामटै नकुं हामक्राय नायमथनै फिलचिदक ककमालायमंग आसुखंग मालायन अककमालायमंग जिरा जिरा हास्टेतै केन्द्रबाय नायकलजाक हामचानि साखामटै नकुं हामक्राय मन्त्री सांसदटै केन्द्रटै हास्टे हाफांनि कुसुक बेरामनि टांगफारक मानजागोन आसान हटेल सुल्क नायकं कथालाय मिया मुंगा कामयाव खबांमा फेगजानाय माने कासुका मालखं खुंसाव रुपना सामं टांगै बरक रां बा रिजाकनि इयाबो टेबलेट कासुका हाजरा कक्टा बरक खनाका आनि खापुनि दाक्टे बुकसं आं तिनि अरन बासा सिनाय सयौ जों हाइन हाइ सिनि बांग्ला पान्दाव हाबलायनाय नरजतन आनलोगियो तंनि बेलेकना हामबाय दिपर काहाम आंगरन बासा सिनाय

0: आप ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: শ্রোতা বন্ধুরা, টিউন করে রয়েছেন 101.6 MHz আকাশবাণী FM উজ্জয়ন্ত। সময় বেলা 2:30, অর্থাৎ সময় হয়ে গেছে বেতার নাটকের। আজকের নাটক তেঁতুল গাছ, রচনা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রযোজনা জগন্নাথ বসু।

0: 哎，古老板呢？
1: 可能也过不来。
0: 哦，给普通市民哦，啥子来当红嘞？
1: 哦，
0: 他们可能忙的不容易，不怕是，其实啥子太阳你看不嘞？
1: 多少个维度站着的啊？那个人能在巴海下？
0: 俺爸给你市民的啊，能在巴海不？你市民是我。
1: 俺爸还有他，不能在帮杭州当哦。
0: 多少个
1: 杭州一个？你看到没有？
0: दर दर नरा तो
2: सब संतरंगा
0: यहाँ में दरा
2: और फाइदी आसु फाइदी ता
0: क्या औरों का नासु का बसी नौकर जा
2: नगन बुला गति वो था करा
0: क्या बसी फेंकर तुम
2: ताऊ तो त्यार में कैसा
0: मानो जो बेबंग त्यारन का वो खुद रोशनी में कैसा वापस हुई गया
2: यहाँ ले खास सावन तो चियो बोलो बस सावन सावन सावन क्या
0: सामा तो दान वगैरह बिता कसम तुम तो थका क्या काम लोका जी सजा गया को बंद
2: थे बोलो रे आसुक सहायता है नहीं हाय से काम कैसा
0: बासी फैया खुदा दरा बैंक था करेंगे दे
2: बैंक था कशी तो ए नूपा ना फाइक्यू
3: फाइक्यू बाप खाने ने
0: बाप खाए तुमसे बासे आसे
2: इको संतरे फायो
3: बाबा आप ताजा होता वो या को दाखा तालमान तेरे दाखा तो हमने पावी थंगा न तमो
0: ओ बासे निंगा बताओ नहीं छमा कौक ने जैसे नहीं पता अंग नर ने पोगी मानो नर ताम नहीं छमा कौक ताखे दाती खना नर फायदी अंग नर फैसा मुंसा खाई चल गया
3: दो पैसा मुखान्य सा कोई काका काकी बोल रही थंग में क्या
0: बासे हम बाबू ने कौन मुट्ठू तक खुली
3: तांगना जोरा तांगी दी कोई शाना जोरा सा दी हंजा कौन साजा कौन कौन रोकता फिर रोक दी कोई पैसा मुखान्य सा
0: बासे अम्मा ने नौकर काम ना
3: शाना जोरा सा दी तांगना जोरा तांगी ऐं ने करा लो सही खा मा अंग ने अंग वो तांगना तो ना समय कर
0: बसे हाँ क्या अंकाशी ने
3: दादू हाँ क्या मायरोक जाए था निकाय पुंगे
0: चलिया अनि खुद रो आप एक बार वाइट लंग
3: मैं जो संगलिया मैं सारी नमून सितांग चिवो मौसी डे किसा खलाय रुमानी
0: चलिया बसे अंकाका
3: दो हाँ क्या
0: दारा भाई कहना दाती फैले
2: दो जो ताई ताकि जाने वो मायसाय थे निहो साले अंधे बा
0: ठंगा के जरा दो
2: दो
0: तम काशा पण फायदे एको तम तामा बापू बोकुरे
2: तामो फायदे कोडा संते
0: फायदे एको
2: फायदे मयांग
0: बस थक्या
2: ताव गा से मेरे तो हबा
3: बी गोनी ने माने रो तम खादे बाबा के को
1: सारा फायदे क्या संते
2: फायदे जी
1: पूरा
2: मोरगो तो चले तो बा
1: मोर तो के ले
3: ดาอังคาอังคาตุยค่ะต้องสะดุ้งก็อีกสักเด้อครับพี่เดี๋ยวเรามาสุริคุมอนน้องค้างค่ะช่วยจังครับพี่ทําให้ได้ความรู้บ้างก็แชร์ตากาเสือทําได้ทําได้ความรู้บ้างก็แชร์ก็เป็นความรู้ท่านนั้นเนี่ยล่ะหิมดิหิมดิก็หิมดิตากาเสือแต่ตําขัญญาดอลิดิ

0: दाफा बरन बला आके आं नखलासि माफारगनाय गलेसि न किसिसि मुं खानदों नङा आ ओ बरे फासा बे गाइब्ले
1: तम बर बेन हम के न बिरचे
2: तम हन
1: द पिरो केर बग्रता हम कां सो गुरना
2: बायबो ओ सामम छापान बांखरे मालांगली यो
1: आको
2: तम खने ने
1: द मखां रो सोना ना या हन
2: मखां सोना तुई सुदुइ नाखरे सु मालांगली या
1: द दुगना बन
2: हिंदी
0: बाबू तुम्हा
1: तुरे
0: बाबू तीन ले तम खाने नी
1: तम से खाने नहीं सुनना बेगा आप छुक छम कब तुम से तम से खाने नहीं हर मना ले पाने ना जाए

0: सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरी वाली में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।